कि एक काम ये कर लो कि दुनिया वालों से उम्मीद बांधना छोड़ दो, उम्मीद बांधना छोड़ दो। तो जब उम्मीद छोड़ दोगे तो इंशाल्लाह तबीयत में कभी बुग्ज़ और झगड़े का ख्याल नहीं आएगा। शिकायतें जो पैदा होती है ना, फुला ने ये नहीं किया, फुला को ऐसा करना चाहिए था ये नहीं किया, मेरी जैसी इज्जत करनी चाहिए थी वैसी नहीं की, मेरी जैसी खातिर मुदारात करनी चाहिए थी वैसी नहीं की, मेरे फला काम का बदला नहीं दिया, मुझे इस बुरी तरीके से मेरे साथ पेश आया, वगैरह वगैरह। ये शिकायतें इसलिए पैदा होती है कि तवक्कोआत वाबस्ता कर रखी। मैंने तवक्को ये वाबस्ता कर रखी है कि फला आदमी के बाद जाऊंगा तो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अब वो तवक्को पूरी ना हुई तो दिल में गिरह पड़ गई, दिल में गिरह पड़ गई, ये तो मेरे साथ उसने सही बर्ताव नहीं किया, शिकायत पैदा। अब वो शिकायत भी, शिकायत का भी अल्लाह ताला ने यह तरीका बताया, भाई किसी मुसलमान से शिकायत पैदा हुई उससे कह दो भाई मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे बुरी लगी, ये कह दो, साफ कर लो बात। लेकिन साफ करने का दस्तूर खत्म, कहने का तो दस्तूर नहीं, वो बात दिल में लेकर बैठ गया। अब दिल में लेकर बैठ गया, फिर कोई ऐसा वाकया पेश आया, एक और गिरह पड़ गई। वो होते होते वो गिरह जो दिल में पड़ती जा रही है वो बुग्ज की शक्ल इख्तियार कर ले, बुग्ज इख्तियार कर लेती है, फिर उसके नतीजे में वो दुश्मनी पैदा हो। हजरत फरमाते हैं कि जड़ इस तरह काटो कि तवक्को ही किसी से ना रखो। अरे किससे मखलूक से तवक्को कायम किए बैठे हो कि ये कर देगा और वो कर देगा, तो ये तवक्को छोड़ो। ये तवक्को रखो कि ये दुनिया जो है इससे तो हमेशा मुझे बुराई ही मिलेगी, बुराई ही मिलेगी। अब अगर कभी अच्छाई मिल गई तो दिल खुश होगा कि मिली तो चाहिए थी, इससे बुराई मिल गई अच्छाई, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तेरा शुक्र है इससे बजाय बुराई की अच्छाई मिल गई। और अगर बुराई मिली तो भाई वो तो पहले ही से ख्याल था कि बुराई मिलेगी, तो उससे शिकायत दिल में पैदा नहीं होगी और दुख पैदा नहीं होगा। हजरत फरमाते ये करके देखो क्या ये तवक्कोआत कायम कर रखी हैं मखलूक खुदा से। अरे तवक्को उससे बांधो जो खालिक है, जो मालिक है, उससे तवक्को बांधो। मखलूक से क्या तवक्को बांधे हुए बैठे हो कि ये फला ये कर देगा, फला वो कर देगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाला वही, उससे तवक्को, उससे उम्मीद बांधो। एक बात तो ये, दूसरा उसूल ये बयान फरमाया, और हजरत ने जो बयान फरमाया जाहिर है कुरान हदीस ही की बात फरमाते हैं हजरत हमेशा, जो कुरान हदीस का खुलासा होता है। हजरत फरमाया दूसरा उसूल यह है कि जब किसी के साथ कोई नेकी करो, कोई अच्छा मामला करो, तो वो अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। किसी को पैसे दिए, किसी की मदद की, किसी की सिफारिश की, किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया, किसी की इज्जत की, तो ये सोचो कि मैं ये जो कर रहा हूं वो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं, अपनी आखिरत को बनाने के लिए कर रहा हूं। जब यह करोगे तो फर्ज करो तुमने तो की अच्छाई और उस खुदा के बंदे ने जवाब नहीं दिया तुम्हारी अच्छाई का, कभी तस्लीम नहीं किया, तुम्हारे एहसान को माना नहीं, तो आप दिल में इंसान के पैदा होती है ना बात कि मैंने तो यह काम किया था और जवाब दिया उसने उल्टा, कभी मानता नहीं मेरी बात, कभी मेरे एहसान को नहीं मानता, कभी मेरी किसी अच्छाई को तस्लीम नहीं करता, हालांकि मैं इसके साथ ये करता रहा। ये शिकायत इसलिए पैदा हो रही है कि तुम ऐसा लगता है कि वो जो अच्छाई कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें तारीफ मिले, ताकि तुम्हें दूसरे लोग तुम्हारा एहसान माने, एहसान नहीं मान रहे तो दिल में शिकायत पैदा हो। तो ये काम जड़मूल ही से गलत है। अगर किसी शख्स ने अल्लाह के लिए किया हो कि मैंने तो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए किया, अब जनाब वो अगर नहीं मान रहा एहसान तो न माने, मेरा मकसद तो हासिल है, मैंने तो अल्लाह के लिए किया था, अल्लाह तबारक व तआला कि हां अगर कबूल हो जाए तो मेरा मकसद हासिल। ये दो बातें हजरत ने फरमाया कि इन दो बातों पर अगर अमल कर ले हम लोग तो आपस के झगड़े खत्म हो जाए, क्योंकि अक्सर झगड़े इस बात से पैदा होते हैं कि मैंने ये अच्छाई की थी उसने उसका बदला नहीं दिया, तो एक तरफ अच्छाई करने की नीयत दुरुस्त नहीं, दूसरी तरफ तवक्को